0: लाए बुढ़ी टाली बट्टी एकेताली बस।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली सी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿार हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूई, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बद ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अलमदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली लाइ सजाद अली लिगारी। मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम अंगारे अरबा जे ॾींहुं फारान ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीज़नि खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज़ पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ां मोहम्मद उमर अमीन भावानी चे गुरु।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम